0: मूव फॉर 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: होशियार रहे, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

मुफलस ज़िंदगी कोई समझे कब यहाँ दर्द हमारे सारे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मदीना पाक की बादब हाज़री नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सामीन करम, आज की बाबरकत बज़्म नात अपने अख्तिताम को पहुँच रही है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारी हमद नात दुरूद व सलाम और दुरूदों में शरीक हुए। इसी मोहब्बत के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आइए अख्तिताम से पहले एक मरतबा दिल की गहराई से दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। या अल्लाह, इस आज की इस बज़म में जो कुछ पढ़ा और सुना गया इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा, हमारी औलाद और नौजवानों की हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा और परेशान हालों को आसानी अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रख, हमें उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा और रोज़े क़यामत उनकी शफात नसीब फरमा। लुटन और गिरदोनवा के तमाम सामीन को अल्लाह ताला ईमान, सेहत, सलामती, खुशी और सुकून अता फरमाए और इंस्पायर एफएम को दीन, हमद, नात, अजान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलाने की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। प्यारे सामीन, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को दुआओं में याद रखिए और अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक से तर रखिए। इंशाअल्लाह अगले जुमा फिर इसी मोहब्बत, इसी अकीदत और इसी बज़म के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ बांटने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।

0: ये कायनात जहां आयनाए जमाल है, वहीं यही कायनात जो है वो मजरे सफाते इंसानियत है। कायनात में रुनुमा होने वाला हर वाकया, हर अमल और हर करिश्मा इंसान की दाखली और जाती कायनात में मुनक्किस होता है। सियारों और सितारों की चाल और रफ्तार से लेकर एक मामूली सी हकीर चिमटी तक हर शय अपने अंदर एक अजीब पैगाम रखती है। हर शय एक अलामत है, खूबसूरत अलामत, और हर शय में एक इस्तारा है, एक बामाना इस्तारा इशारा। ये कायनात मुरक्कबे नूर है, इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कहकशाओं के अजीम और वसी सिलसिले, शमसो कमर के जलवे, चमकने वाले सितारों की यह हसीन कायनात इतनी मुनव्वर है कि यह समझना मुश्किल नहीं कि इसको तख्लीक करने वाला खुद जमीन और आसमानों का नूर है। इतनी रोशन कायनात एक रोशन दलील है एक नूरानी खालिक की। सामीन, आप जानते हैं कि यहां पर बिलियन कक्षाएं हैं, क्लस्टर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सियारे हैं, गैलेक्सीज हैं। अगर जौक नसर मुयसर हो तो यह कायनात एक अजब तमाशा है। किरणों में आफ्ताब हैं, पत्रों में बहर हैं, दरिया में हबाब हैं, यह दरिया हबाब में है, जर्रों में दश्त हैं। देखने वाली नजर हो तो नजारों की कमी नहीं। इस कायनात की वो सौतों के बारे में जो कुछ भी कह दिया कह जाए बड़ा मुबालगा होगा। हम एक सूरज से वाबस्ता है और इस कायनात में ऐसे करोड़ों सूरज मौजूद हैं, ऐसे सियारे और सितारे मौजूद हैं, और ये इतने हैं जिनका जमीन से फासला हजारों लाखों नूरी साल है, यानी कि 186,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चलने वाली रोशनी एक सितारे से जमीन पर आने में लाखों साल लेती है। अल्लाह अल्लाह, ये वसत इंसानी सोच को जो है वो सहम, इंसान सोचकर सहम जाता है, वो सोचों में मगलूब हो जाता है कि इस कायनात को बनाने वाला इतना अजीम है। इस वसी कायनात में जमीन की क्या हैसियत और जमीन में हमारी क्या हैसियत। और जमीन में अगर जानते तो एक मुल्क की क्या हैसियत या उसकी क्या अहमियत, और मुल्क में एक शहर और शहर में एक मकान और मकान में एक इंसान की क्या अहमियत, और फिर इंसान में एक छोटा सा दिमाग क्या जसारत करेगा इस वसी कायनात के अजीम खालिक के बारे में लब कुशाई करने की। बंदा नाचीज हूं, क्या कर सकता हूं, इतना अकल और समात उस रब ने दिया, हम तो हमारे पास तो ना अल्फाज हैं नाम अल्लाह के रहमतों के बारे में बयान फरमा सकते हैं, ना बयान है, जो वो अता कर दे उसकी रहमत है। मकाम तहय्युर और मकाम सकूत है, ऐसी कायनात ऐसे इलाके में है जहां इतनी सर्दी है कि इंसान जिक्र करे तो ख्याल मुंजमित हो जाते हैं, और कहीं इतनी इतनी गर्मी है, इतनी हिद्दत के सूरज भी पना मांगे। ये कायनात अजीब है, तखलीक अपने खालक की मजह है, जिस खालक ने कायनात को तखलीक का ऐरान कुन मजर बनाया। इस खालक ने इंसान को बड़े दावे और रसूख से अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया। ये एक अजीम इंसान एहसान है, अजीम मौसम का इंसान को बेनाई अता फरमाने वाला अपने बेमिसाल हुसन के जो है वो परतव में इस कायनात की हमारंग नरिंगों और रंगीनी में जलवागर है। सामीन, इंसान की पहचान के लिए कायनात को आसमान और जमीन के हवाले से जाहिर फरमाया गया है। इंसान जो है वो इसी हस्ती पर सफर करना शुरू करता है और ये सफर यहीं तमाम हो जाता है। ये एक आजमाइश है, एक इम्तिहान, जो चार दिन की जिंदगी, पल की जिंदगी और शायद उससे भी कम इंसान के गिर्द फैली ये जिंदगी इसके इल्म के वसी अब्बाब हैं, जिसे इल्मुल अस्मा अता फरमाया गया है। वो अस्मा से अशिया को पहचानता है
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Hi, I'm Saleha. I was on Inspire FM today, which I think is a great platform for people to raise awareness of really good issues. So well done to Shamiza and her team. I just want to leave a message with you guys. Spread kindness wherever you are and just always try to be good people.
5: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
6: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.

0: इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की गटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की गटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात
1: सकते हैं लेकिन अल्लाह उन पर गिरफ्त नहीं फरमाते जब तक वो अमल पैरा न हो जाए। अल्लाह सुबहान व तआला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की याद के चिराग जला दिए, वो सुनता है, वो कबूल फरमाता है, और इन चिरागों की रोशनी में आने वाले इंसानों को नई मंजिलों पर चलने की तौफीक दी। अल्लाह की तलाश बहुत आसान है, वो इंसानी शारख से करीब है, बहुत करीब, लेकिन इस तक रसाई हासिल करना इसलिए मुश्किल है कि इंसान इंसान है और अल्लाह अल्लाह। हादस कदीम नहीं हो सकता और कदीम हादस नहीं हो सकता, बस फर्क यही है कि हम साजिद हैं वो मस्जूद, हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और वो पैदाइश और मौत से आजाद हय्यू कयूम है। वो हर आगाज से पहले मौजूद था और हर अंजाम के बाद मौजूद रहेगा। वो इतना करीब है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, जिस तरह हम अपनी बेनाई को खुद नहीं देख सकते, लेकिन बेनाई हमारे करीब रहती है, हमारी रूह हमारे पास है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हमारी जात हर वक्त हमारे साथ है लेकिन अपनी जात का दीदार मुमकिन नहीं। समंदर में रहने वाली मछली समंदर को देख नहीं सकती, पानी से निकले बगैर वो कैसे देख सकेगी, और अगर पानी से निकलेगी तो समंदर नजर नहीं आता, और पानी से निकले तो मछली नहीं रहती। बस अल्लाह के जलवे पास हैं, साथ हैं, लेकिन क्या है और कहां है सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अल्लाह की मोहब्बत की इंतहाई अमली शक्ल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में है। अरशाद बारी ताला है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत इंसान के हवाले के बगैर मंजूर ही नहीं हो सकती। हम अल्लाह से मोहब्बत करें और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफी करें तो यह मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। राब्ते के लिए इंसान और इंसान कामल का होना शर्त अव्वल है, और उन इंसान कामल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह की याद में और इंसानों की खिदमत में गुजरी। इरफान इलाही के लिए मकामात जो है, मकाम इंसानियत को पहचानना जरूरी है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। अल्लाह की मंजिल के सफर पर इंसानों के डेरे हैं, यह रास्ता इंसानों से गुजरता है। अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह के नाम पर निसार होने वाले, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले, अल्लाह की याद में बेखबर होने वाले सब अल्लाह के मज़ाहिर हैं। इन मकामात से गुजरे बगैर तौहीद का सफर मुमकिन नहीं। जमीन पर रहने वालों का ख्याल रखो, आसमान वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। कहते हैं ना कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोते हो, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। वो कहते हैं कर बला और हो बला, किसी के साथ नेकी करेंगे, किसी के साथ अखलाक से पेश आएंगे सिला रहमी करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आपकी भी मदद की जाएगी। जमीन पर रहने वालों का ख्याल रखिए, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा, आसमान वाला आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के नाम पर ही बाज़ औक़ात अल्लाह के बंदों पर जुल्म हुआ, इस बात का ख्याल रखा जाए कि इंसानों को तंग न किया जाए। इंसान के जरिए ही से मंजिलें हासिल होती हैं, वाहदत के जलवे कसरत में पिन्हा है, लेकिन इसके समझने के लिए एहतियात और उस्ताद कामल की जरूरत है। मैं सोचता हूं बहुत जिंदगी के बारे में, ये जिंदगी भी मुझे सोच कर न रह जाए। सामीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलती पर माजरत खा हूं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इंसान हूं, गलती हो सकती है और होती है, अल्लाह हमें माफ फरमाए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह बफजल खुदा। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम में ये प्यारा सा कलाम आपको ब्रेक के उस पार ले जाएगा और उसके बाद जो इंस्पायर फिल्म की दीगर नशरियात हैं वो जारी और सारी रहेंगी। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001237474 कोट.org.uk।

लोग जो जिद का शिकार हो जाएं, हक को जानने के बावजूद उसको ना माने, उसका इनकार कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, इन्ना लदीना कफरू, फिर उनका हाल क्या होता है? कि आप उनको कुछ समझाएं, कुछ डराएं, कुछ उन्हें जहन्नम का बताएं, कुछ दोजख की बात करें, जो मर्जी करें, वो क्या करते हैं? ला यूमिनून, वो नहीं मान के देते। वो कहते हैं कि ये तुम किसी और से करो जाके बातें, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं सुनना। अब आप देखें कि अल्लाह सुबहानु ताला ने तो हर इंसान को फितरत पर पैदा किया है। पैगंबर जब हक लेकर आता है, वो ऐसी चीज नहीं होती जो किसी को समझ ही ना आए कि ये क्या कह रहा है। यानी आपकी बातें कोई फलसफा नहीं थी। पैगंबर कोई फिलोसोफर नहीं होता, वो कोई साइंटिस्ट नहीं होता कि जिसकी थ्योरी समझ ही ना आए और उसको समझने के लिए एक बड़ी जिंदगी चाहिए हो, या कोई ऐसे फलसफे या उलझी हुई बातें या शेर व शायरी नहीं, क्योंकि शायरी भी बाज़ औक़ात आराम से नहीं समझ आती ना। तो पैगंबर जो पैगाम लाए वो खुली खुली बातें थी, साफ बातें थी, सबको समझ आने वाली थी। पैगंबर का अपना अखलाक और किरदार और उसकी अपनी शख्सियत बिल्कुल जानी पहचानी थी। बहुत से ऐसे दलायल मौजूद थे जो इस बात की गवाही थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी हैं, कुरान सच्ची किताब है, और जिस एक रब की तरह वो बुला रहा है वही असल खालिक और मालिक है इस कायनात का। लेकिन उन्होंने सारी बातें समझकर जिद में आकर इनकार कर दिया। उनको भी बस अपनी वो एक कौमियत परस्ती थी, या अपनी कौम का जो पुराने रवाज और तौर तरीके थे, रिवायात थी, वो उस पर चलना चाहते थे। तो कई एक असबाब होते हैं हक के इनकार के। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इनकार कर दिया है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल अब सील कर दिए हैं। क्या अल्लाह ताला ने पहले ही सील कर दिए थे या बाद में किए हैं, क्यों किए हैं? तो बुनियादी तौर पर हुआ ये कि आप जब किसी चीज से काम न ले, मसलन अगर आप अपने हाथ से कोई काम न ले, तो जो लोग कभी लिखते नहीं है उनके लिए लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने हाथ से कभी काम ही नहीं लिया। लेकिन जो लोग काम करने वाले, जैसे कुछ लोग आप देखें इतनी तेजी से वो निटिंग कर रहे होते हैं, वो कैसे करते हैं? काम ले लेके इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो बगैर देखे कुछ कर रहे होते हैं। इसी तरह और भी सारे स्किल्स आप देखिए, इसी तरह अगर आप चले ना तो आपको चलना बहुत मुश्किल लगता है, अगर आप खाए ना तो खाना मुश्किल लगता है। कोई भी जिस्म का हिस्सा अगर आप इस्तेमाल ना करें तो क्या होता है? उसको जंग लग जाता है, वो काम नहीं करता, बेकार हो जाता है। इसी तरह अगर कोई दिल से काम नहीं लेता तो दिल को क्या होता है? जंग लग जाता है, दिल सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ते उसके अंदर फिर सर्कुलेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, बंद हो जाता है, सील हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा ज़ाहू अज़ाग अल्लाहु कुलूबहुम, जब वो बिगड़े अल्लाह ने भी उनके दिलों को फिर टेढ़ा कर दिया। जब वो टेढ़े हुए तो अल्लाह ने भी टेढ़ा कर दिया। एक और जगह पर आता है, फबिमा नक़्ज़हिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, उनके अहद तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। तो दिलों की सख्ती इंसान के गुनाहों की वजह से होती है। जब इंसान मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है तो फिर अल्लाह ताला दिल से सलाहियत छीन लेता है। और इसकी क्या वजह होती है? इंसान की ख्वाहिशात होती है। इंसान अपनी मनमानी करना चाहता है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहता है। और एक और वजह होती है तकब्बुर। तकब्बुर क्या होता है? खुद को बड़ी चीज समझता है। वो कहते थे कि हम सरदार लोग हैं, हम बड़े कबीलों से हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं है, ये कैसे पैगंबर बना लिए गए? ये चंद एक वजूहात थी जिसके बिना पर उनको मुश्किल हो गया था हक कबूल करना। तो खत्म अल्लाह आला कुलूबिहिम, दिल की बात इसलिए की ना कि दिल ही ख्वाहिशात का मरकज होते हैं। जब आपका दिल किसी और चीज में लगा हुआ, मसलन इस वक्त आपके दिल में कि घर जाना है, घर जाना है, तो मैं अगर लेक्चर को अपने टाइम से ऊपर लंबा करूंगी तो फिर आपका दिल उचाट हो जाएगा, फिर आप मेरी बात नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि अब आपका दिल यहाँ नहीं रहा, कहीं और चला गया। ये आम जिंदगी में भी होता है ना कि जब दिल में कुछ और बस जाता है तो फिर अल्लाह की बात नहीं समझ आती। इसीलिए आप देखें कि जिन लोगों को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक होता है, या जिन लोगों को और इसी तरह की दुनिया की कुछ हॉबीज, कुछ और शौक होते हैं, फिर उनका दिल उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर हक की बात, कुरान की बात, खुदा की बात, उनका उसमें दिल नहीं लगता, उनको वो अच्छी नहीं लगती, वो करना नहीं चाहते। तो ये कुफारे मक्का जो थे, खासतौर पर उनका जिक्र है, और फिर उसके बाद ये सबके लिए आम है जो भी ऐसा करे। तो उनका हाल ये था कि वो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे, उनके दिल
دنیا کی